0: नमस्कार, दिल की आवाज सुनने वाले सभी श्रोताओं को शाइनी का सलाम, नमस्कार और आदाब। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, ये हमारा सीधा प्रसारण है, तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिएगा। हाँ जी, और शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: हेलो।
0: हेलो जी, नमस्ते। ये कौन बोल रहा है?
1: बाबी, कैसे? ठीक है ना?
0: ठीक है। ये कौन बोल रहा है?
1: नाम सुभाष।
0: ओके जी, नमस्ते।
1: और सुनाओ। बहुत बहुत बहुत
0: जी जी, और सुनाओ।
1: और क्या है, और उधर काम पर है।
0: ओके,
1: हाँ,
0: कौन सा गाना चाहिए?
1: करण अर्जुन फिल्म है ना, उसमें बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम थे, वो गाना है।
0: ओके जी, तो ये प्यार सा गाना हम आपके लिए जरूर लगा देंगे। और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाती रहिएगा।

0: दिल की आवाज़ में आपका फिर से स्वागत। दोस्तों, दोस्ती वह रिश्ता होता है जो खून से नहीं दिल से बनता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी कामयाबी में ताली बजाए और परेशानी को अपने आपके साथ हमेशा आपका हाथ थामे। अगर आपके पास ऐसा एक दोस्त हो तो कभी उसे खोने मत देना। हाँ जी, और शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज़ में स्वागत।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, कैसे हो?
1: बस बढ़िया चल रहा है।
0: और सुनाओ।
1: बस गर्म, मतलब बारिश।
0: जी जी जी जी,
1: मजा आ रहा है।
0: मजा आना ही चाहिए क्योंकि ये सब हमारे हाथ में तो है नहीं। और सुनाओ सर, कौन सा गाना चाहिए?
1: अच्छा, पारसमणि पिक्चर से वो जब याद आएगी।
0: वो जब याद आए,
1: जब याद आए।
0: जी, बहुत याद आए, बहुत प्यारा गाना। गाओगे?
1: नहीं, गाने का गाए तो ठीक नहीं रहे।
0: क्यों, आप कभी गाते आप नहीं हो?
1: नहीं, गाने की आदत नहीं है।
0: अच्छा,
1: सुनाने की आदत है।
0: हाँ, सुनने की आदत है। ओके जी, तो ये प्यार सा गाना हम आपके लिए इस मौसम में जरूर लगा देंगे। और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया। बुलाते रहिएगा।
1: थैंक यू।

0: दिल की आवाज़ में आपका फिर से स्वागत और एक प्यारा सा कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज़ में स्वागत।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्ते जी,
1: आप कैसे हैं?
0: एकदम बढ़िया, आप बताओ।
1: आप ठीक है? मेरे को राजा हिंदुस्तान का कोई भी एक गाना चले।
0: अच्छा, ओके जी, तो आपके लिए राजा हिंदुस्तानी का एक प्यार सा गाना हम जरूर लगा देंगे। हाँ जी, और दिल की आवाज़ में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाती रही।

0: और सुनाओ, कौन सा गाना चाहिए?
1: मैं खुदा गवाह गाना है।
0: गाओगे?
1: नहीं।
0: क्यों, गाना नहीं गाते हो?
1: नहीं, अच्छा गाना है सुनने के लिए। अच्छा।
0: ओके जी, तो ये प्यार से कौन सा गाना चाहिए? कोई भी गाना चलेगा। ओके जी, ओके ओके ओके,
1: थैंक यू।
0: ओके जी, तो आपके लिए प्यार से गाना हम जरूर लगा देंगे। और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाते रहिएगा।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत और एक प्यारा सा कॉलर आ गया है। हेलो दिल की आवाज में स्वागत।
1: स्वागत है, कैसे है?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताओ?
1: सही आते हैं ना? आवाज सही आते
0: हैं? हाँ ठीक है, आवाज ठीक है।
1: हाँ सही आते, ठीक है ठीक है। कैसा है मौसम, कैसा है?
0: अरे एकदम मस्त, बोलो।
1: बहुत अंदर है, सही बात है, बिल्कुल ओके। हमें गाना बोला था,
0: कौन सा गाना चाहिए?
1: हाँ ओ ओ हम तुमको इतना प्यार करेंगे, हम तुमको इतना प्यार करेंगे, हेलो ए गमेरा याद करेंगे, हेलो ए गमेरा याद।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत और एक प्यारा सा कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत। हेलो, ये कौन बोल रहा है?
1: सुरेंद्र बोल रहे हैं
0: जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो?
1: अच्छा,
0: और सुनाओ, कौन सा गाना चाहिए?
1: तो पल देसी जाना नहीं।
0: ओके जी, तो ये प्यार सा गाना हम आपके लिए जरूर लगा देंगे। हाँ जी, और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाती रहिएगा।

दोस्तों, जिंदगी की किताब में हर दिन एक नया पन्ना होता है। जो बीत गया उसे मुस्कुराते विदा कीजिए और जो आने वाला होता है उसे दिल से स्वागत कीजिए। अपनों का साथ हमेशा बनाए रखें, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहें। और इस प्यार से विचार के साथ आपकी शाइनी जर्मियास लेती हैं आपसे विदा। अगले हफ्ते मिलने तक नमस्कार।

0: ആടിമാസം വരവായി, റിയൽ ആടിമാസവും വരവായി.
1: ആടിമാസം ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ?
0: ആ ആടിമാസവും ജോളി സിൽക്സിന്റെ റിയൽ ആടി സെയിലും ഒന്നേ ഉള്ളൂ. വാങ്ങുമ്പോ പുതിയ കളക്ഷൻസ് തന്നെ വാങ്ങണം. ഇവിടെ എല്ലാം മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ കുറവ്.
2: കാഞ്ചീപുരം, ബനാറസി, ഡെയിലി വെയർ സാരികൾ, കുർത്ത, കിഡ്സ് വെയർ, ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ, വെസ്റ്റേൺ വെയർ, മെൻസ് വെയർ.
0: വിലോ 999.
3: ജോളി സിൽക്സ്, കൊല്ലം, തിരുവല്ല, കോട്ടയം, അങ്കമാലി.
4: और हां, जल संचय तो करना ही करना है. बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है. कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है. तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.
3: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे. हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी किया जाएगा. मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर किया जाएगा. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.

नाम है मेजर महादेवन, हवलदार जय कुमार, हवलदार हरि, नायक गोपन, हवलदार अरुण, नायर एटन, अपू कुटेन और